0: सुबह सवेरे तुपता ना बारबेक्यू दी तैयारी
1: हुणे ही वॉलमार्ट तो आया फ्रेंड्स नु समो बारबेक्यू ब्रंच ले बुलाया है
0: ब्रंच अच्छा नवी ग्रिल भी लाया है
1: वॉलमार्ट ते ने हजारा ही रोल बैक्स मैं ले आया एक्सपर्ट ग्रिल 5 बर्नर गैस ग्रिल प्लस स्टेनलेस स्टील बर्नर $298 था बीकाजी बर्गर पैटी $4.48 दिया अते योर फ्रेश मार्केट चॉकलेट इन पेस्ट्रीज ने $4.47
0: लव समर
1: ते मैं वॉलमार्ट पैसे बचाओ जिंदगी बेहतर बनाओ

0: Spring parties, picnics, barbecues, bhai wah!
1: Walmart rollbacks, spring their favorites. Cut kimta, wah bhai wah!
0: Bikaji burger patty, $4.97. Mast masala chips, 200 gram, $2.47. Royal facial tissue, 12 pack, 2 ply, hun $13.97. Listerine 1 liter original, $4.96.
2: Wah, wah, wah! Wah.
0: हजारा रोल बैग्स का मजा लो।
3: वॉलमार्ट, पैसे बचाओ, जिंदगी बेहतर बनाओ।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।

देश में नए हैं? नेशनल बैंक कनाडा में आपके पहले कदम उठाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। मनी सेंस के अनुसार 2025 में कनाडा में नए आने वालों के लिए सबसे अच्छा बैंक खोजें और नए आने वालों के लिए हमारी बैंकिंग सेवाओं के साथ शुरुआत करें। नेशनल बैंक।